0: 还是来，
1: 你来吧，广告。
2: एक लड़की थी दीवानी सी, जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।